उजाला रेडियो देश भर में सुनाई देता है फिया दे बी प्लस तोर घर में तोर ऑटो में तू बता दे सबको इसे उजाला रेडियो दे बे प्लस पर देश भर में उजाला रेडियो द क्रोस्ट कैट द बेस्ट उजाला रेडियो

0: अंधेरे का इशारा समझो, अब तेरा दिल का जलाना होगा।
1: तुम बड़े को हो, मुझे जाने दो।
0: जा सकोगी?
1: मुझे जाना होगा।
0: जाओ।
1: छोड़ो
0: नहीं।
1: छोड़ो ना।
0: आज की रात तो दिल तोड़ो ना।

0: उजाला रेडियो।
1: अरे ये कौन गा रहा है? बैजू, दिल धड़क उठता है इसकी आवाज से। कौन है ये? बैजू बारा।

I have been a great admirer of this wonderful person, Mohammed Rafi. मैं हमेशा सोचता था कि भाई ये ऐसे टैलेंट बहुत रेयरली मिलता है, बहुत रिस्पेक्ट में मैं करता था उनको. रफ़ी साहब हमारे हिंदुस्तान के संगीत जगत में मेल सिंगर के हैसियत से सबसे बड़ा गाने वाला है.

सारे के सारे तेरे विश करूं पूरी, दिला दो घर चंडीगढ़ में। फिल्म का नाम है गुड न्यूज, एन हेरलिके इंडियाज़ कॉमेडी मूवी uit het jaar 2019. Ja, in de regie Raj Mehta, en dat was tevens zijn regiedebuut, met in de hoofdrol niemand minder dan Kareena Kapoor en Akshay Kumar.

The biggest Hindustani mix. Ujala Radio. मैं हूँ अमी जयराम. I hope you enjoyed गाना. फिल्म का नाम है स्त्री डांसर और गाना का नाम है गर्मी.

नम्र संस्कार होने वाला है उजाला रेडियो पर आप फरमाइश दे सकते हैं 15 फरमाइश फॉर्मर होने तेरो ऑफ उजाला रेडियो स्टूडियो मेल नर info@ujala.net info@ujala.net

0: करो।
1: उजाला उजाला ला रहे हैं आपके वास्ते सुनवालो जातदार सनीचर 19 सितंबर को मेरफार थिएटर में। हाँ, अमस्टरडम के मेरफार थिएटर में ये जबरदस्त कॉन्सर्ट होने वाला है। द ग्रेटेस्ट वॉइसेस ऑफ बॉलीवुड।
0: मेरा ही होना होगा
1: जिसमें आप लता मंगेशकर, आशा भोसले, मोहम्मद रफी, किशोर कुमार, माइक मुकेश, अरिजीत सिंह, कुमार सानू, अलका यानी, उदित नारायण, श्रेया घोषाल, सोनू निगम एंड नोह फेल मेर गाने वाले के गाने आप सुनेंगे। ला रहे हैं उजाला आपके वास्ते द ग्रेटेस्ट वॉइसेस ऑफ बॉलीवुड। ज्यादा 19 सितंबर टिकट के दाम कुछ टिकट बाकी रह गए हैं। रंग 1 €20, रंग 2 €15 एंड हैप्पी एंड स्टार्स दम कॉस्ट योर कार्ड मार €3.50। चेक ऑफ meervaart.nl। इनलोप vanaf 7 uur meervaart theater में zaterdag 19 september.

कुदरत का है करिश्मा एक दूसरे से है मिलना, दुनिया की जरसमी पर किस्मत को है आसमाना, ये प्रेम का यहाँ है हर किस न भूल जाना, आपस के मोहब्बत ये धर्म है सिखाता। हमारे तमाम सुनने वालों को आप हरी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, राम राम, नमस्ते और आदाब। उजाला रेडियो का प्रोग्राम आप लोग सुन रहे हैं। हमेशा की तरह जिनके घर पर कोई भी खुशियां, जन्मदिन, सालगिरह, विवाह, शादी वाह हो, आप रिको हार्दिक से बधाई और तहे दिल से मुबारकबादी और उसके जाते हैं। जो कोई बीमार या तो लाचार है तो उनकी तंदुरुस्ती के लिए भगवान से प्रार्थना, अल्लाह से दुआ है आप रिकी ताकत और तंदुरुस्ती के लिए। उजाला रेडियो का प्रोग्राम आप लोग सुन रहे हैं। आज शुक्रवार 18 तारीख सितंबर का प्रोग्राम करीबन 11 मिनट व्यतीत हो चुका है, 9:11 खुद मोर खालमा वेलकम। चाहे जहां पर आप

हम में सुनते होंगे, सुनते ही जाइए। दिन में 12 बजे तक आप लोग के साथ हम देने वाले हैं। मैं हूं सुभाष गोविंद। हम आप सभी को आज शुभ का प्रोग्राम में स्वागत करता हूं, वेलकम। और आज का प्रोग्राम में कुछ मिले जुले संगीत से आप सभी को हम खिदमत करेंगे। उजाला रेडियो का व्हाट्सएप का फोन का नंबर है 9203630808 पर। दिन में 12 बजे तक आप लोग मुझे ऐप कर सके हैं। उजाला रेडियो का दफ्तर आज सुबह में 10 बजे से खोले जाएगी, दिन में 3 बजे तक। फन मानदख तो मैं सात रख फन 3 to 3 hours। और यहाँ के तार का नंबर है, फोन का नंबर है 9204090807 पर आप लोग तार कर सके हैं। या तो उजाला का वेबसाइट है www.ujala.nl या तो info@ujala.nl पर हर एक जानकारी आपको मिलेगा, या आप लोग ऐप पठा सके हैं। आज जी शुक्रवार का प्रोग्राम हम आरंभ करते हैं एक सुंदर सा भजन से, आप लोग सुनेंगे।

ओम जय अम्बे गौरी। और इस तरह से ये खूबसूरत सा भजन जो प्रोग्राम में अभी आप लोग सुने और वो भी खास करके अनुराधा पौलवाल जी के आवाज में ये सुंदर सा भजन जो प्रोग्राम में अभी आप लोग सुन रहे थे। एंड यू आर उजाला रेडियो का प्रोग्राम।

ओ सनम मेरे प्यार की कसम, उस तरह से गाना जो प्रोग्राम में भी आप लोग सुने। हे यू आर उजाला रेडियो का प्रोग्राम जो आप लोग सुन रहे हैं, हमारे प्यारे सुनने वालों, एन शुक्रवार का सुबह का प्रोग्राम जो आप लोग सुन रहे हैं। वीकेंड है एन व्हाट खाओ इन द वीकेंड, कोकन का बनाओ खो यार। अगर आप अपने काम पर बैठ करके प्रोग्राम को सुनते होंगे, कहती काम कर रहे हैं, नहीं मैं बाकी कॉफी ऑफर

ही मेरा बसेरा आयुषरा से गाना जो प्रोग्राम में अभी आप लोग सुने और देखा जाए लीना रमेश्वर भी एश्क दे शहर में प्रोग्राम को सुने और खुद मूर्ख लीना एंड यू आर उजाला रेडियो का प्रोग्राम है। ठीक है, 9:30 का वक्त है, 3:30। ए खुद मूर्ख, फाइन वीकेंड टू गवेंस हमारी तरफ से आप सभी।

और तेरे बिना ये दिल है वीरान, और इस तरह से गाना जो प्रोग्राम में भी आप लोग सुन रहे थे। हम तो लोग से बता चुकली, तो लोग से पूछ चुकली कि वीकेंड में क्या बनाओ, कोई वत खाओ फंदा कोकन, वत खाओ फंदा खेतन। अगर आप लोग ऑनबैज करते होंगे तो स्वादिष्ट ऑनबैज कीजिए, मैं तो नहीं ऐतन ऐ चुस्मा कल कलमाओ। अशोक भी प्रोग्राम को बैठ करके सुने, खुद मोर्ख भाई अशोक, ये गाना तुम्हारे नाम।

मेरी सांसों में, और इस तरह से गाना जो प्रोग्राम में अभी आप लोग सुने। एंड अब की बार गाना जो प्रोग्राम में आप लोग सुनेंगे तो देखा जय संद्र भी प्रोग्राम को बैठ करके सुन रहे हैं खुद मोर प्यार के साथ ये गाना।

तेरे बिना दिल कहाँ जाए। अब इस तरह से गाना जो प्रोग्राम में भी आप लोग सुने एंड अब की बार गाना जो प्रोग्राम में आप लोग सुनेंगे तो खास करके देखा जाए प्रोग्राम को बैठ करके सुन रहे भैया अरुण बाबूलाल के लिए गाना जो प्रोग्राम में आप लोग सुनेंगे। गाने वाले होंगे करोड़ों का दिल चौराना वाला हार्ट ऑफ मिलियंस माइटी मुकेश जी की आवाज में ये खूबसूरत सा गीत जो प्रोग्राम में आप लोग सुनेंगे। और हमारे प्यारे सुनने वालों अगर भी आप लोग कोई गाना सुनना चाहेंगे तो आप लोग मुझे ऐप कर सके। हमारा ऐप का फोन का नंबर है 9 3 3 9 9।

यार अपनी भी क्या जिंदगी, और इस तरह से गाना जो प्रोग्राम में अभी आप लोग सुने, करोड़ का दिल चुराने वाला हार्ट मिलिस माइटी मुकेश एंड दलहाक शहर में भाई आनंद जग्गू भी प्रोग्राम को बैठ करके सुने, खुद मूर्ख ये गाना तुम्हारे नाम।

साथ है तुम्हारा और हमारा। और इस तरह से गाना जो प्रोग्राम में भी आप लोग सुने, और मेरे शहर में रेशमा एंड रमेश भी प्रोग्राम को बैठ करके सुने हैं। खुद मूर्ख तो ये गाना

0: सात एक तेरह सात और इस तरह से गाना जो प्रोग्राम में अभी आप लोग सुन रहे थे। हमारे प्यारे सुनने वालों, करीबन देखा जाए 5 मिनट बाकी रहा 10 बजने में, एंड यू आर उजाला रेडियो का प्रोग्राम जो आप लोग सुन रहे हैं।
1: गाकर भी रुक जाते हैं।
0: और है तो भाई ना वीकेंड यार, वीकेंड में जो भी आप लोग करेंगे हमेशा प्यार प्यार प्यार के साथ, अगर प्यार ना हो तो प्यार कर ले यार। अभी से आप सभी सुनने वालों को शुभ वीकेंड, फाइन वीकेंड हमारी तरफ से प्यार के साथ। यू आर उजाला रेडियो का प्रोग्राम जो आप लोग बैठ करके सुन रहे हैं, और प्यार के साथ हम आप लोग के लिए गाना जो घुमा रहे हैं, दोनों साथ में यार, प्यार के साथ। वेल ठीक है, 10 बजने वाले हैं, ना दे रिक्लाम ना दे ब्रेक यार, फिर से हम आप लोग से मिलते हैं तुरंत।

0: और मौसम कितना प्यारा है, कितना मोई धूप निकल है, कितना मोई घाम निकल है। यावेल लेकर वीर यार वीकेंड वा के लेकर वीर नाद ब्रेक नाद रिक्लामा बैनक वितर एंड यू आर उजाला रेडियो का प्रोग्राम चाहे जहां पर आप लोग सुनते होंगे।
1: Vanuit de Hoogstad. Ujala Radio. Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download

उजाला रेडियो का प्रोग्राम आप लोग सुन रहे हैं हमारे प्यारे सुनने वालों। और उजाला रेडियो का दफ्तर खोले गए हैं, शाम में 3 बजे तक खुला रहेगा, जहां का फोन का नंबर है 9204090907 पर आप लोग तार कर सके हैं। हर एक काम काज के लिए, जो भी आपको करना है, जरूरी खबरें के लिए, एंड यू आर है फरमाइश देना है, जो भी काम दिलाना

0: और जन हाँ सर से राकेश में एगो पठाई से अपना तुलक और का बनाओ कोई का खाओ कोई फंदाख वोर तो दाल भात बाकलियाओ मैं तमसोई के भाजी और टमाटी के चटनी यावेल इस लेकर देख रसेप अंदर आवे लगो दोस्त दाल भात मैं बकलियाओ बचाओ बचाओ या दाल भात बचाओ अमसोई के भाजी और टमाटी की चटनी अस्वितिया रे एच स्मार्कल फुर्सरा की सालमाल यावेल शुभ दिन आप हर एक को नाइना वीकेंड जो भी वीकेंड में आप लोग करेंगे प्यार से कर लेना दुलार से करिए नहीं तो ना करिए हम बोले लो तो सर हमारी बात मान ले तो चलिए बरेडा शहर में जहां पर ऋषव गायत्री भी प्रोग्राम को बैठ करके सुन रहे खुद मोरख ये गाना तुम्हारे नाम
1: पागलपन कहती है पर उन्हें क्या पता जब रूह किसी से इस कदर जुड़ जाए तो वो सिर्फ चाहत नहीं इबादत बन जाती है और मैंने मैंने तो

0: है जस्तजू मेरे आखिरी किस्से में बस दिखेगी तू ही तू।
1: यार कितना मोई गाना, मेरी आशिकी है बस है तू। आयुष सरो से गाना जो प्रोग्राम में अभी आप लोग सुने, अब की बार गाना जो प्रोग्राम में आप लोग सुनेंगे तो फैंसल पोल्डर में एमी जी भी प्रोग्राम को बैठ करके सुन रही है। तो गाना को मांग के है एन जगजीत सिंह जी के आवाज में ये खूबसूरत सा गीत जो आप लोग सुनेंगे।

थोड़ा हंस लेना एंड थोड़ा जी लेना। इस तरह से गाना जो प्रोग्राम में अभी आप लोग सुने, गजल जो प्रोग्राम में आप लोग सुन रहे थे, एंड यू आर उजाला रेडियो का प्रोग्राम जो आप लोग सुन रहे हमारे प्यारे सुनने वालों। अब की बार गाना जो प्रोग्राम में आप लोग सुनेंगे तो गाने वाले होंगे देखा जाए देवेंद्र सिंह शिवनाथ जी के आवाज में, और इस गाना को मांग करने वाले हैं देखा जाए सुतमेर में संता के लिए गाना जो पेश है, एंड यू आर उजाला रेडियो का प्रोग्राम है। करीबन 20 मिनट व्यतीत हो चुके हैं, 10:20 मिनट ऊपर 11 जब 20 मिनट ऊपर 3 है।

0: ओ मेरे हमराही, और इस तरह से गाना जो प्रोग्राम में भी आप लोग सुने, द किंग ऑफ बैड गाना देवेंद्र सिंह शिवनाथ जी के आवाज में। वेल इतना ढेर अपन दराय लेगा, थैंक यू वेल अलमाल। Blijft u luisteren tot 12 uur jaar? Jawel, you are Ujala Radio.
1: Hoezo?
0: Ai, ai, ja, ai, boy.
1: Mina, Maya.
2: Ae, so, so, love you, girl.
0: Wel, Rakesh, dan haag share mijn programma met ik ergens zoenen. Toe je gana, tu mahare naam, bhai Rakesh. Chalande, weekend hai, jaar. Jawel. Jawel.

आओ इस तरह से गाना जो प्रोग्राम में भी आप लोग सुन रहे थे, कुमार शानू एंड अलका याग्निक जी के आवाज में, एंड यू आर उजाला रेडियो का प्रोग्राम जो आप लोग सुन रहे हमारे प्यारे सुनने वालों, रोतरदम में बेटा भी प्रोग्राम को बैठ करके सुने खुद मूर्ख बेटा।

बदल यार नजरिया ना लगे एन मिल जुल के गाओ रे। आओ इस तरह से गाना जो प्रोग्राम में भी आप लोग सुने। एन अब की बार दम सुरिनाम पारमारी बहु से गाना को मांग के है रत्ना, गाना मांग कर इसे हम दिनेश के लिए। और सब यहाँ पर फकांसी से है एंड यू आर उजाला रेडियो का प्रोग्राम सुने हैं फैन फकांसी यार वेलकम। और ये गाना आप दोनों के नाम रत्ना।

मेरी मंदिर हो तुम ही मेरी पूजा हो, औसरों से गाना जो प्रोग्राम में अभी आप लोग सुने एंड यू आर उजाला रेडियो का प्रोग्राम जो आप लोग सुन रहे हमारे प्यारे सुनो लो, करीबन 20 मिनट बाकी रहा 11 बजने में। अब की बार गाना जो प्रोग्राम में आप लोग सुनेंगे तो देखा जाए ब्रेडा शहर में आसरीना भी प्रोग्राम को बैठ करके सुने, खुद मोरख ये गाना तुम्हारे नाम।

अरे यार लिख दे तू मोहब्बत तकदीर मेरे। और इस तरह से गाना जो प्रोग्राम में भी आप लोग सुन रहे थे, एंड अब की बार गाना जो प्रोग्राम में आप लोग सुनेंगे, तो गाना जो प्रोग्राम में आप लोग सुनेंगे एक और ऐसा ही गीत जो प्रोग्राम में हम आप लोग को सुनाने वाले हैं, और इस गाना को मांग करने वाली है देखा जाए सत्या भी प्रोग्राम को बैठकर सुने हैं। तो ये गाना तुम्हारे नाम कर देता हूँ।

और इस तरह से खूबसूरत सा गीत जो प्रोग्राम में भी आप लोग सुनेंगे आओगे सजना, और इस तरह से गाना जो प्रोग्राम में अभी आप लोग सुने। अब की बार देखा जाए तो राकेश दनहा शहर में प्रोग्राम को बैठकर सुने हैं और इस गानों को मांग किया है। फिल्म का नाम तेरे नाम

बल क्यों किसी को, और इस तरह से गाना जो प्रोग्राम में अभी आप लोग सुने, करीबन 3 मिनट बाकी रहा 11 बजने में, ड्रीम रूटन फॉर एल एफ एन यू आर उजाला रेडियो का प्रोग्राम जो आप लोग सुन रहे हमारे प्यारे सुने बोलो। अब की बार गाना जो प्रोग्राम में आप लोग सुनेंगे एक और ऐसा ही गीत आप लोग सुनेंगे, और वीकेंड है एटवेर इज सो मोई विशाल।

रात और दिन के देवे है तोर साथ, के तोर साथ सूते है, के तोर साथ जागे है, केकर साथ तू ओतो में घूमे है, और केकर साथ तोर घर के सब काम होवे है। उजाला रेडियो के साथ तो हाँ, हमेशा सुख में और दुख में उजाला रेडियो तू

और उजाला रेडियो का प्रोग्राम है हमारे प्यारे सुनने वालों करीबन 8 मिनट बाद से चुकल है 11 बजकर 8 मिनट ऑफर हेलो खुद मरहल मा पैन वीकेंड तू खवेन हमारी तरफ से लास्ट घंटो लास्ट से इच खत्म हुए यार ठीक 12 बजे तक आपको के साथ हम देने वाले हैं तो 12 फिर एंड नाद ब्रेक नाद रिक्लाम ओफर लेजिस ब्रेक धड़कन तुम हो आनंद मंगरू भी प्रोग्राम को बैठ करके सुने तो ये

पल धड़कन में तुम हो, इस तरह से गाना जो प्रोग्राम में भी आप लोग सुने। एंड दीमन शहर में फौसिया भी प्रोग्राम को बरकर सुने खुद मोरख। एंड भाई अलमेरे में माइक बुद्धू खुद मोरख। एंड यू आर उजाला रेडियो है।

हल तेरे बिना दिल कहीं आओ, इस तरह से गाना जो प्रोग्राम में अभी आप लोग सुन रहे थे। और देखा जाए लेमर में भाई पवन भी प्रोग्राम को बैठ करके सुने खुद मूर्ख। और चलिए ये गाना तुम्हारे नाम का देता हूँ। एंड ब्रेडा शहर में श्रीमान और श्रीमती बिहारी भी प्रोग्राम को बैठ करके सुने खुद मूर्ख। यू आर है उजाला रेडियो है, आई बॉय द बेस्ट वन।

तेरे बिना मैं अधूरी, जयसिंह, श्रिया गोसाल एंड नेहा की आवाज में गाना जो प्रोग्राम में अभी आप लोग सुन रहे थे। और हमारे प्यारे सुनने वालों, करीबन 20 मिनट व्यतीत हो चुकल है 11:20 ऑफर 11। और देखा जाए हॉर्न शहर में माला भी प्रोग्राम को बैठ करके सुने खुद मर्ख और वीकेंडों में चाहे जहां आप लोग जाइए हमें साथ में लेके जाइए।

तेरे संग सनसना और हर जन्म में बस तेरा ही, और इस तरह से गाना जो प्रोग्राम में अभी आप लोग सुन रहे थे। और हमारे प्यारे सुनने वालों, उजाला रेडियो का प्रोग्राम जो आप लोग बैठ करके सुन रहे हैं, एंड अब की बार गाना जो प्रोग्राम में आप लोग सुनेंगे, एक और ऐसा ही गीत जो हम प्रोग्राम में आप सभी को सुनाने वाले हैं और गाना जो प्रोग्राम में आप लोग सुनेंगे, और देखा जाए माइक बुद्धू भी प्रोग्राम को बैठ कर सुने हैं, और देखा जाए भी तेल बरख में एल्स चमन भी प्रोग्राम को बैठ कर सुने हैं। यू आर उजाला रेडियो का प्रोग्राम, और चलिए गाना जो प्रोग्राम में आप लोग सुनेंगे और इस तरह से गया। हाँ, नतुलक यार, धीरे धीरे धीरे धीरे आवे है।

और हमारे प्यारे सुनने वाले, जो गाना हम सुनाना चाहते हैं और नतुल के गनवा ये वाला होना चाहिए, और गाना जो प्रोग्राम में आप लोग सुनेंगे तो इस तरह से आप लोग सुनेंगे। वल तुम क्या मिले जाने जा,

वल तुम क्या मिले जाने जा, ईश्वर से गाना जो प्रोग्राम में अभी आप लोग सुन रहे थे। हमारे प्यारे सुनने वालों, करीबन थोड़ा देर तक और आप लोग के साथ हम देने वाले हैं। और आज का रेसिपी जो प्रोग्राम में मिला है, दाल भात और बचाओ एंड टमाटी की चटनी। जबाओ दाल भात एंड बचाओ बेनगुन में बॉयक भी प्रोग्राम को मेरे सुने खुद मूर्ख बॉयक जबल यू आर है, उजाला रेडियो है, कोई खेल है। चलन दे आई बॉय, इट्स यू आर उजाला रेडियो।

आजारे जरा आओ इस तरह से गाना जो प्रोग्राम में अभी आप लोग सुने। और देखा जाए भाई राजेश बानार से उत्तराखंड शहर में प्रोग्राम को बैठ करके सुने हैं एंड यू आर उजाला रेडियो का प्रोग्राम। और ये कहती काम करे है सानत वैरक वैरक से भाई और ये गाना तुम्हारे नाम। अरे यार बच के रहना।

अजी हमसे बच कर कहाँ जाइएगा। हम तो लोग से बता ही चुके कि हमसे बचकर कहाँ जाइए यार। एंड यू आर उजाला रेडियो का प्रोग्राम, करीबन 20 मिनट बाकी रहा 12 बजने में, 20 मिनट 4 12। थोड़ा देर और आई बॉय वीकेंड रेडियो आपके लिए।

अव्वल यार मेरे यार शब्बा खैर आओ इस तरह से गाना जो प्रोग्राम में अभी आप लोग सुने और देखा था ये दूसरी भी प्रोग्राम को बैठ करके सुने हैं और बनाए से आज ब्राइड बोन मैट के बेबी यार मैट के प्यार ऐसा ओक लेकर ऐसे स्मार्ट कलमा और चलिए दूसरी ये गाना तुम्हारे नाम उजाला रेडियो है वीकेंड रेडियो

पूरा कागजी रह गया। आओ इस तरह से गाना जो प्रोग्राम में अभी आप लोग सुन रहे थे, हमारे प्यारे सुनने वाले उजाला रेडियो का प्रोग्राम है और करीबन 7 मिनट बाकी रहा, 7 मिनट बाकी रहा यार 12 बजने में। आइया उजाला रेडियो और हमारे प्यारे सुनने वालों, धीरे धीरे धीरे धीरे हम आप लोग सब इजाजत चाहेंगे।

एंड यू आर उजाला रेडियो है, 6 मिनट बाकी रहा 12 बजने में हमारे प्यारे सुनने वालों। अच्छा स्पेन वीकेंड यार, और आप सभी को मेरा प्यार भरा वीकेंड, आप सभी को पकड़ ली बाटी यार, ना ना ना ना, आई या आई बॉय, यू आर उजाला रेडियो।

और हमारे प्यारे सुनने वालों, अपना वीकेंड आप लोग मोई से बिताइयो, मोई से रहियो, और जो भी आप लोग करेंगे वीकेंड तो मोई से करिए। और आशा है कि आज का प्रोग्राम जो हमने बनाए सजाए आप लोगों के लिए, आप लोगों को पसंद आए होंगे। हमारा साथ देने के लिए, हमारा प्रोग्राम सुनने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया। आप लोग जो हमें ऐप किए, इतना ऐप किए, इतना मोई मोई तो लोग ऐप पठे धन्यवाद।

और हमारे प्यारे सुनो लोग, हम आप लोग से ज़्यादा चाहेंगे तो का आप लोग मौज रहिए और जो भी वीकेंड में करिए बहुत ही प्यार से बहुत से दुलार से कर लेना, और हम फिर आने वाले दिनों में आप लोग से जरूर से मिलेंगे। यहीं पर हम छोड़कर जा रहे हैं, यहीं पर हम आप लोग से मिलेंगे। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, राम राम, नमस्ते एंड खुदा हाफिज। खिदमत की आपका दोस्त सुबह शिव गोविंद, बाय बाय, स्वाय स्वाय, फाइन वीकेंड, तालमाओ। और अभी प्रोग्राम में मृत्यु समाचार सुन लेना।

खुशी के साथ गमी है, पैदाइश के साथ मौत। उजाला रेडियो का प्रोग्राम में मृत्यु समाचार आप सुनिए। आम्स्टेलफेन से श्रीमान हेंद्रक जियावन और बाकी परिवार बहुत दुख के साथ ये सूचना को कर रहे हैं। बीते हुए मंगलवार को 79 साल के आयु में निखन सैफ अंतखियार और श्रीमान हेंद्रक जियावन और 3 साली कारमेन सीला और मीला, इन लोगों के बहनोई रो का साढ़ु भाई लड़कन अश्विन और प्रवीण जियावन के फूफा आजमी जियावन का मौसा, इपनबर्ग का रहने वाला श्रीमान हनुमान राम खेलावन की मृत्यु लेचकंदाम में हो गई है। आम्स्टेलफेन से श्रीमान हेंद्रक जियावन और परिवार बहुत दुख के साथ ये सूचना को कर रहे हैं। बीते मंगलवार को 79 साल की आयु में निखन सैफ अंतखियार और सार श्रीमान हेंद्रक जियावन और 3 साली कारमेन सीला और मीला के बहनोई रो का साढ़ु भाई अश्विन और प्रवीण जियावन के फूफा अजमी जियावन का मौसा, इपनबर्ग का रहने वाला श्रीमान हनुमान राम खेलावन की मृत्यु लेचकंदाम में हो गई है। अर्थी से विदाई लेने के मौका है आज शुक्रवार के रात में 7 बजे से 8 बजे तक और कल शनिचर के रात में 7:30 बजे से 8:30 बजे तक ओइटवार्ड सेंट्रम ओनसे जोरख के मुर्दालय त्रिपस्त्रात 139 दनहाख में। अर्थी के दाह क्रिया आने वाले मंगलवार दिन में 4:15 बजे देंस दखास्तांदे क्वार्टोफर फिर किए जाएंगे। क्रीमाटोरियम एकलनबर्ग एकलनबर्ग लान 7 रेसवेक में। सुनने वालों से निवेदन है सूचना को और आगे तक पहुंचा देने के लिए। उजाला रेडियो परिवार जियावन और परिवार राम खेलावन के दुख में शामिल है।

उजाला रेडियो ये है सुनो लो और मैं हूँ लॉर्ड महावीर सोमदेन कॉफी चाय मेदक शो में अभी आप सुन लेना हमारे साथ एंड आनंद चंद्रिका सिंह के साथ एक होप दस्ती दर इस संदर्भ पता ना है कि आई की ना आएगा मार हम तो बाटी वेलकम ऑफ दिस फ्राइडे 18 सितंबर

किशोर कुमार के आवाज में नगमा आपने सुने हैं, या एक रोज मैं टर्प कर, एक रोज मैं टर्प कर तुके हम आपन बना लेबे। सोमगे मनन सैन वोल हार्डन टोख, दी गेवन नीट ऑप। Soms moet je wel, soms moet je wel volhouden. Hè? Soms moet je volhouden. En dan wie weet, zei het, kooit jivan staat hier miljoen.

live vanuit de Hoofdstad. उजाला रेडियो देश भर में तू जान है तो उजाला रेडियो उजाला ही उजाला देश भर में हाँ हर गांव में हर कोना में ओतो में घर में सुनाई देता है उजाला रेडियो दे अबे प्लस के जरिए उजाला इस वन हेल नीलांग तू जान है तो ढिंढोरा बजा दीजिए खाया है बिना कोटरावा तोर विवाह होने वाला है तोर शादी होने वाला है सुनवालो तो डीजे आप फरमाइश ऑफ उजाला रेडियो 15 फरमाइश 15 आवाजें फॉर मोर 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो दिस ga jij binnenkort trouwen door wie baan honne wel het door shadi honne wel het neem contact op met Ujala Radio e-mail info@ujala.nl 15 aanvragen voor maar 100 euro op Ujala Radio

बदल जाए दुनिया ना बदलेंगे हम तुम्हारी कसम। द मैन विद द गोल्डन वॉइस तलत महमूद की आवाज में आप सुने फिल्म कैप्टन किशोर का गीत और ये उजाला रेडियो है। मुकेश जी हिस्सा ले रहा है।

जल मिले नदी के जल में, और नदी मिले सागर में, और सागर मिले कौन सी जल में, ये कोई जाने ना। मुकेश जी की आवाज़, फिल्म अनोखी रात से गीत को आप सुनें।

अक्सर ये बातें करते हैं, तुम होती तो कैसा होता, तुम ये कहती तुम वो कहती, तुम इस बात पे हैरान होती तुम उस बात पे कितनी हंसती, तुम होती तो ऐसा होता, तुम होती तो वैसा होता। मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते।

ये रात है, ये तुम्हारी जुल्फें खुली हुई हैं, है चांदनी या तुम्हारी नजरों से मेरी रातें धुली हुई हैं, ये चांद है या तुम्हारा कंगन, सितारे हैं या तुम्हारा आंचल, हवा का झोंका है या तुम्हारे बदन की खुशबू, ये पत्तियों की है सरसराहट कि तुमने चुपके से कुछ कहा है, ये सोचता हूं मैं कब से गुमसुम कि जबकि मुझको भी यह खबर है कि तुम नहीं हो, कहीं नहीं हो, मगर ये दिल है कि कह रहा है कि तुम यही हो, यही।

0: उजाला के ऑल टाइम फेवरेट्स जो हर दिल को खुश कर देते हैं, सुनिए और गुनगुनाइए।
1: हेलो, पापा की जिद के आगे हार गए। शादी हो रही है मेरी, हो सके तो भूल जाना।
2: ऐसे कैसे भूल जाऊं तुम्हें, प्यार छोटा नहीं है।

0: उजाला रेडियो डे अब प्लस पर देश भर में सुनाई देता है. तू बता दे सबको इसे बताते ओटो में तू सुन सके तू घर में सुन सके है उजाला रेडियो और उजाला रेडियो साथ में ले जाइए तू चाहे जहां पर जाइए तू जान है तो उजाला रेडियो.
1: यू आर
2: दिस इज हेलेन द गेस्ट फ्रॉम द ANWB. देयर zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.

रात और दिन के देवे है तोर साथ, के तोर साथ सूते है, के तोर साथ जागे है, केकर साथ तू ओतो में घूमे है, और केकर साथ तोर घर के सब काम होवे है। उजाला रेडियो के साथ तो हाँ, हमेशा सुख में और दुख में उजाला रेडियो तू

जाला रेडियो ये है सुनवालो और मैं हूँ लॉयड महावीर सोमदीन कॉफी चाय मेदक शो में अभी आप सुन लेना हमारे साथ एंड आनंद चंद्रिका सिंह के साथ आई होप दैट यू देयर इज सम दैट पता ना है कि आए कि ना आएगा मैं हम तो बाटी वेलकम ऑफ दिस फ्राइडे 18 सितंबर

किशोर कुमार के आवाज में नगमा आपने सुने हैं। एक रोज में टरप के तुके हम आपन बना लेबे। सोमगे मन सैन फॉल हार्डन टॉक दी गेव नीट ऑप। Soms moet je wel, volhouden. Hè? Soms moet je volhouden. En dan wie weet, zei het, kooit jiwa saat himil jayen.

0: QR.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. De meeste files worden nu korter. Bij elkaar staat er nog zo'n 290 kilometer file. Op de volgende wegen heb je de meeste vertraging. Onder andere op de A50 van Arnhem naar Os nog een lange file. Tussen knooppunt Grijshoord en Ravenstein is de vertraging ruim 3 kwartier. Er zitten veel omrijders bij vanwege de afgesloten A73. Daardoor ook file op de N271 Nijmegen-Venlo tussen Mook en Ottersum. Daar 3 kwartier vertraging. Op de A58 Breda-Tilburg tussen knooppunt Galder en Tilburg-Reeshof is de vertraging ruim 3 kwartier. Is een ongeluk gebeurd, alle rijstroken zijn wel vrij. En op de A59 knooppunt Zonzeel-Den Bosch tussen Terheide en Waspik is de vertraging ook 1 uur. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Ujala Radio, देश भर में तू जाने तो उजाला रेडियो उजाला ही उजाला देश भर में हाँ हर गांव में हर एक कोना में ओटो में घर में सुनाई देता है उजाला रेडियो DAB+ के जरिए उजाला इस वन हेल नीलम तू जाने तो ढिंढोरा बजा दीजिए ये है उजाला रेडियो और उजाला रेडियो के जरिए आप लोग के फरमाइश अभी हम लाने वाले हैं और फरमाइश हम पेश करने वाले हैं आज बड़ी खुशी की बात है मुबारक दिन है दनहा के रहने वाली रोसा लियाकत हुसैन दिल्लू की आज 42 साल की सालगिरह है 82वां है सालगिरह मुबारक हो मुबारक हो मुबारक हो मुबारक हो अल्लाह मुबारक हो रोसा लियाकत हुसैन दिल्लू जो मतें आपकी फरमाइश

बस ज्यादा वक्त न लेते हुए हम एकदम ला रहे हैं आप लोग के फरमाइश और भी उजाला रेडियो रेडियो के जरिए यहाँ से फरमाइश हम पेश करने वाले हैं दनहा के रहने वाली रोसा लियाकत हुसैन दिल्लू के लिए 82वां व्यारह आज है 82 साल की सालगिरह आज है 82 यार ये सालगिरह की खुशी के मौके पर अल्लाह ताला से बस यही दुआ है कि आपको हमेशा सलामत रखे खुश रखे तंदुरुस्त रखे

मुबारको मुबारको मुबारको मुबारको। सबसे पहला नामा जो आप सुनने को जा रहे हैं मांग किए गए हैं रोजान लियाकत हुसैन दिल्लू के लिए 82 साल की सालगिरह में तख्त से फियारख के खुशी के मौके पर। लड़कन रॉय आसिफ असलम शाढ़ा शरीदा शरीता वाहिदा और जमीला वालदा के लिए प्यार प्यारी माँ के लिए, 12 लड़कन की तरफ से नानी और दादी के लिए और 22 लड़कन की तरफ से पर नानी और पर दादी के लिए बड़ी प्यार मोहब्बत मुबारकबाद के साथ अर्ज करें प्रोग्राम में।

Den Haag kun je degene wel die Rosa Liaken toe zijn. Die Lukiaas Beazi zal krijgen het 82e verjaardag. Mubarak maken per Lurken Roy Asif Aslam, Sharda Sherida Sherita Wahida en Jamila Makle Periperi Walda Klee Bara Lurken Nani or Dadi Klee Bais Lurken Ketrose per Nani or per Dadi Klee Bripiar Mohabbat or Mubarak Badi Kazat Erske. अब यहां से आप सुनने को जा रहे हैं लहमा जो की मांग के हैं 12 लड़कन की तरफ से लीवे लीवे नानी और लीवे लीवे दादी रोसा लियाकत हुसैन दिल्लू के लिए बड़ी प्यार मोहब्बत और मुबारकबाद के साथ।

Den Haag की रहने वाली रोजा लियाकत हुसैन दिल्लू की आज 82 साल की सालगिरह 82 व्यारा है। मुबारक मौके पर 12 लड़कन की तरफ से नानी और दादी के लिए बड़ी प्यार मोहब्बत और मुबारकबादी के साथ अर्ज किए। रोजा लियाकत हुसैन दिल्लू जो देन हाग में रहते हैं, आज आपके 82 साल 82 व्यारा है। सालगिरह की खुशी के मौके पर 12 लड़कन की तरफ से नानी और दादी के लिए प्यार दुलार और मुबारकबाद के साथ मोहब्बत के साथ पेश है।

आज है शुक्रवार 18 तारीख सितंबर और आज बड़ी मुबारक दिन है, जुमे का दिन है, मुबारक दिन है और आज है फरियारी, सालग्रह है आज। दनहा के रहने वाली रोजा लियाकत हुसैन दिल्लू की आज 82 साल की सालग्रह है, 82 सफियारा है। सालग्रह के खुशी के मौके पर 12 लड़कन प्यारी प्यारी नानी और दादी के लिए बड़ी प्यार दुलार और मोहब्बत मुबारकबाद के साथ अर्ज किए।

उजाला रेडियो के जरिए और भी फरमाइशें हम जारी कर रहे हैं। देन हाँ की रहने वाली रोजा लियाकत हुसैन दिल्लू के 82 साल की सालगिरह 82 सफेद आज है। इस मुबारक मौके पर बेटियां शारदा शरीदा शरीता वहीदा और जमीला प्यारी प्यारी वालदा के लिए बड़ी प्यार मोहब्बत मुबारकबाद के साथ अर्ज करें।

हाँ की रहने वाली रोजा लिया का तुजैन दिल्लू की आज 82 साल के सालगिरह है, 82 से फियारा है। सालगिरह के खुशी के मौके पर सभी बेटियां शारदा, शरीदा, शरीता, वाहिदा और जमीला प्यार प्यारी वालदा प्यार प्यारी माँ के लिए बड़ी प्यार मोहब्बत दुलार और मुबारकबाद के साथ अर्ज के प्रोग्राम में

उजाला रेडियो के जरिए हम कुछ देर के लिए फरमाइश को रोक देते हैं ना द कमर्शियल्स। आपकी फरमाइश उजाला रेडियो के जरिए जारी किया जाएगा। रोजाल याकर तुजैन दिल्लू 82 साल ग्रे जो आज 82 व्यार्थ है साल ग्रे मुबारक हो मुबारक हो मुबारक हो मुबारक हो मुबारक हो। अल्लाह ताला से दुआ है कि आपको हमेशा सलामत रखे, खुश रखे, तंदुरुस्त रखे, हर एक बीमारी से, हर एक मुसीबत से दूर रखे। उजाला रेडियो के जरिए फरमाइश देना है 59 vragen voor maar 100 euro op UR Ujala Radio. Stuur je mail naar info@ujala.com.

कल आया था वो आज गया, और जो आज आया है वो कल जाएगा। इसी के साथ सुनिए मृत्यु समाचार।

खुशी के साथ गमी है, पैदाइश के साथ मौत। उजाला रेडियो का प्रोग्राम में मृत्यु समाचार आप सुनिए। आम्स्टरडैम से श्रीमान हेंद्रक जियावन और बाकी परिवार बहुत दुख के साथ ये सूचना को कर रहे हैं। बीते हुए मंगलवार को 79 साल के आयु में निखन सैफ अंतखियार और श्रीमान हेंद्रक जियावन और 3 साली कारमेन सीला और मीला, इन लोगों के बहनोई रो का साढ़ू भाई लड़कन अश्विन और प्रवीण जियावन के फूफा अजमी जियावन का मौसा, इपनबर्ग का रहने वाला श्रीमान हनुमान राम खेलावन की मृत्यु लेजगंदाम में हो गई है। आम्स्टरडैम से श्रीमान हेंद्रक जियावन और परिवार बहुत दुख के

रहे हैं। बीते मंगलवार को 79 साल की आयु में नीखरन जीफन तखियार और सार श्रीमान हेंद्रक जियावन और 3 साली कारमेन सीला और मीला के बहनोई रोका साढ़ू भाई अश्विन और प्रवीण जियावन के फुफा अजमी जियावन का मौसा इपन बरख का रहने वाला श्रीमान हनुमान राम खेलावन की मृत्यु लेजखंदाम में हो गई है। अर्थी से विदाई लेने के मौका है आज शुक्रवार के रात में 7 बजे से 8 बजे तक और कल शनिचर के रात में 7:30 बजे से 8:30 बजे तक ओइटवार्ड सेंट्रम ओनसे जोरख के मुर्दालय त्रिपस्त्रात 139 दनहाख में। अर्थी के दाह क्रिया आने वाले मंगलवार दिन में 4:15 बजे देंस दखास्तांदे क्वार्टोफर फीर किए जाएंगे। क्रीमाटोरियम एकलनबर्ग एकलनबर्ग लान जीफन रेसवेक में। सुनने वालों से निवेदन है सूचना को और आगे तक पहुंचा देने के लिए। उजाला रेडियो परिवार जियावन और परिवार राम खेलावन के दुख में शामिल है।

आज बड़े खुशी के दिन है, आज जुमे का दिन है, मुबारक दिन है, क्योंकि आज शुक्रवार 18 तारीख सितंबर को दनहा के रहने वाली रोजा लियाकत हुसैन दिल्लू की आज 82 साल की सालगिरह है, 82 व्यारह है। सालगिरह मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। रोजा लियाकत हुसैन दिल्लू की आज 82 व्यारह है। सालगिरह के खुशी के मौके पर इस बार जो हम आप सुनने गुजार हैं, मांग करने वाले हैं 12 लड़कन पर नानी, नहीं नहीं नहीं, 12 लड़कन की तरफ से नानी और दादी के लिए, 22 लड़कन की तरफ से पर नानी और पर दादी के लिए, प्यारी प्यारी पर नानी पर दादी नानी दादी के लिए बड़ी प्यार मोहब्बत और मुबारकबादी के साथ, मोहब्बत के साथ पेश है।

Den Haag की रहने वाली रोजा लियाकत हुसैन दिल्लू की आज 82 साल की सालगिरह है, 82वां सालगिरह है। इस सालगिरह की खुशी के मौके पर तीन बेटे रॉय, आसिफ और असलम प्यार प्यारी माँ के लिए, वालदा के लिए बड़े प्यार दुलार मोहब्बत के साथ अर्ज किए। रोजा लियाकत हुसैन दिल्लू की आज 82 साल की सालगिरह 82वां सालगिरह है। इस मुबारक मौके पर इस बार नामा को फरमाइश करने वाले हैं लड़कन रॉय, आसिफ, असलम, शाडा, शरीदा, शरीता, वाहिदा और जमीला। वालदा के लिए 12 लड़कन की तरफ से नानी और दादी और 22 लड़कन पर नानी पर दादी के लिए बड़ी प्यार मोहब्बत मुबारकबाद के साथ मोहब्बत के साथ पेश है।

शुक्रवार 18 तारीख सितंबर को मुबारक दिन है, क्योंकि आज दिन हाक के रहने वाली रोजा लियाकत हुसैन दिल्लू की आज 82 साल की सालगिरह है। 82 सफी आ रहा है। इस सालगिरह की खुशी के मौके पर नहमा को फरमाइश के प्रोग्राम में रॉय आसिफ और असलम प्यार प्यारी वालद के लिए बड़ी प्यार मोहब्बत और मुबारकबाद के साथ रोजा लियाकत हुसैन दिल्लू की आज 82 साल की सालगिरह है। 82 सफी आ रहा है। मुबारक मौके पर शारदा शरीदा शरीता वहीदा और जमीला लिव लिव माँ प्यार प्यारी वालदा के लिए बड़ी प्यार मोहब्बत मुबारकबादी और मोहब्बत के साथ अर्ज करें।

आज शुक्रवार 18 तारीख सितंबर है। तनहा की रहने वाली रोसा लियाकत हुसैन दिल्लू की आज 82 साल 82 से व्यारा है और इस मुबारक मौके पर लड़कन रॉय आसिफ असलम शारदा शरीदा शरीता वहीदा और जमीला प्यारी प्यारी वालदा के लिए 22 लड़कन की तरफ से पर नानी और पर दादी एंड 12 लड़कन की तरफ से नानी और दादी 12 किंदरन की तरफ से नानी और दादी और 22 लड़कन की तरफ से बड़ी प्यार के साथ दुलार के साथ पर नानी पर दादी के लिए मोहब्बत के साथ मुबारकबादी के साथ प्रोग्राम में फरमाइश किए। रोसा लियाकत हुसैन दिल्लू जितनी से फरमाइश था 82 साल के सालगर के खुशी के मौके पर 82 सफियादा के खुशी के मौके पर अब खत्म होने पर आए हैं। उजाला रेडियो के जरिए फरमाइश सुनने देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हम यही उम्मीद कर रहे हैं कि जितनी से फरमाइश उजाला रेडियो के जरिए पेश किया गया है आपको जरूर से पसंद आया हुआ होगा। आप अपन फरियारी मोई से मनाइए, सालगिरह मोई से मनाइए, रिश्तेदार के साथ। ये सालगिरह मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो, अल्लाह मुबारक हो। अल्लाह ताला से दुआ है कि आपको हमेशा सलामत रखे, खुश रखे, तंदुरुस्त रखे, हर एक बीमारी से, हर एक मुसीबत से दूर रखे। मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। उजाला रेडियो के जरिए फरमाइश देना है स्टूडियो मेल ना info@ujala.nl info@ujala.nl 15 aanvragen voor maar 100 euro op UR Ujala Radio 15 aanvragen voor maar 100 euro stuur e-mail naar info@ujala.nl Hab ook staan wel ik doe nummer 4 mail en wel heel Ujala Radio gezien. Ik wens jullie allemaal een hele fijne avond, fijn weekend. Het is weekend. Dus weekend met Joey plannen hega. Soms moet je sommige plannen gewoon niet uitvoeren. Gewoon moet je mijn plan naar beneden. Neem gewoon rust. Ga lekker rustig zitten. Doe niks. Ja, dat moet ook wel kunnen, toch? Want we willen altijd in een weekend van alles en nog wat doen. En ja, en soms komt het uit. En soms komt het niet uit. Dus ja, soms moet je een keertje zeggen, nou, die weekend, ik koplanden. Helemaal rust. Fijn weekend allemaal. Mooi zijn hier. En vanavond om 11 uur, vierkbaar, herhaling van Koffie Chai Middagshow Soenlina. Bye bye.

ऑल टाइम फेवरेट्स जो हर दिल को खुश कर देते हैं, सुनिए और गुनगुनाइए।

0: संगीत का सफर जारी है उजाला रेडियो पर।
1: महफिल में मेरी आपका वेलकम है हजरात, भूल के गोले उबम रिलैक्स कीजिए आज। अरे अरे अभी अभी तो आए हैं, उठना नहीं जनाब,

बदल जाए दुनिया न बदलेंगे हम तुम्हारी कसम। और गीत आप सुने तलत महमूद जी की आवाज में, फिल्म का नाम कैप्टन किशोर, और ये उजाला रेडियो है। मोहम्मद रफी साहब हिस्सा लेंगे अब।

ढल जाए हाय रात ना जाए। और मोहम्मद रफी साहब की आवाज फिल्म गाइड का गीत को आप सुने, मुकेश जी हिस्सा लेंगे उजाला रेडियो का प्रोग्राम में।

चांद को क्या मालूम कि चाहता है उसे कोई चकोर। मुकेश जी की आवाज और फिल्म लाल बंगला से गीत को आप सुने। एक बार फिर मोहम्मद रफी साहब शारदा के साथ।

उजाला रेडियो ये है सुनोलो और मैं हूँ लॉयड महावीर सोमदेन कॉफी चाय मेदक शो में अभी आप सुन लेना हमारे साथ एंड आनंद चंद्रिका सिंह के साथ आई होप दैट यू देयर इज दैट पता ना है कि आए कि ना आएगा मार हम तो बाटी वेलकम ऑफ दिस फ्राइडे 18 सितंबर

किशोर कुमार के वास में नगमा आपने सुने हैं। एक रोज में तड़प के तुके हम आपन बना ले बे। सोमख मन सैन फॉल हार्डन तो दी गेव नीट ऑप। Soms moet je wel, volhouden. Hè? Soms moet je volhouden. En dan wie weet, zei het, koi jiwa saathi mil jaye.

0: सुन वालों भी हम आपसे बताने वाले हैं आज के हेडलाइंस, आज के समाचार, आने वाले दिनों के लिए समाचार. मैं एक हनु एवं नार आनंद चंद्रिका सिंह, होपलुक क्रैक में वेल ऑन द लाइन. आज यहाँ स्टूडियो में ना है, मार है इज वेल बेस्किकबार ऑफ दिस मैन. आनंद गुडमिदाग.
1: Hallo. Good afternoon, Kaiser.
0: Good afternoon. Ja, je bent druk, dus ja, we moeten het vandaag telefonisch doen, hè? Als toen je aan studie bent, toen abate, dus ja, ik weet niet of je daar koffie hebt gekregen. Waar je ook bent, hebben niet auto mee baten. Ik hoop niet dat je
1: koffie, hamse, jaane, kitna door hai aaj.
0: Aaj koffie, tussen door.

अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ राहत फतेह अली खान और ये है उजाला रेडियो। उजाला रेडियो को सुनते रहिए और मधुर मधुर संगीत जो है वो सुनते रहिए उजाला रेडियो पे। और मेरे भी गाने सुनिए, औरों के भी सुरीले गाने सुनिए।